0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर ठीक 10:03 पर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, FM
0: तो चलिए नॉनस्टॉप गपशप की शुरुआत करते हैं आज की कुछ मौसम का हाल चाल जानकर। आज भी मौसम में बताया जा रहा है कि दोपहर या शाम तक बादल छाने वाले हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की गुंजाइश। अधिकतम तापमान अगर कल की बात करें पिछले 24 घंटों में तो अधिकतम तापमान रहा 32.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम, और न्यूनतम तापमान रहा 24.7 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। अधिकतम नमी रही 96% और न्यूनतम नमी रही 68%, और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई फिलहाल तो कल। और ये था मौसम का हाल चाल फिलहाल। चलिए सुन लिया हमने वेदर का कंडीशन, और उसके बाद अब चलते हैं सुनते हैं जबरदस्त गाना।

0: चुटकी नुस्खे।
1: तो दोस्तों इस जबरदस्त गाने के बाद चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन, दूसरे सेक्शन एग्जैक्टली एक चुटकी नुस्खे की ओर। सुबह कंघी उठाई और दो बाल क्या टूटे, दिल आने लगा हाथ में। अरे अरे शांत हो जाइए, दिल को संभालिए और बालों को मैं संभालती हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट सेक्शन में, जहाँ रसोई के डिब्बों से निकलते हैं खूबसूरती के सबसे बड़े राज, और ये है एक चुटकी नुस्खे। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट पापी, और आज हम बात करेंगे सलों वाले महंगे बिल्स की छुट्टी करने और घर बैठे बालों को महाराजा जैसा ट्रीटमेंट देने की। आजकल तो हर दूसरे इंसान की यही कहानी है, कभी बाल झड़ने का रोना, कभी डैंड्रफ का टेंशन, तो कभी बेजान ड्राई हेयर की परेशानी। और जब हम इनका इलाज ढूंढने किसी बड़े सैलों में जाते हैं ना, तो वहाँ का बिल देखकर ही बचे खुचे बाल भी खड़े हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके महंगे सैलों के हजारों रुपए बचाए जाए। आज के इस पूरे शो में हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, इस सेक्शन में बात करने वाले हैं हेयर केयर के बारे में, पर वो भी बिना एक रुपए खर्च किए, सीधे आपकी और हमारी रसोई के खजाने से। तो चाय का सप लीजिए और सुनिए ये जबरदस्त सा ट्रैक, और वापस मिलेंगे हम इस गाने के बाद।
2: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा निशलावत की।

0: जबरदस्त गाने के साथ झूमते झूमते भी इस समय कैसे बीत रहा है समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल जो है हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, ठीक है, बालों की हेयर केयर ट्रीटमेंट के बारे में बात जरूर करेंगे एक जुट के नुस्खे में, पर फिलहाल कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉनस्टॉप गपशप में।
1: जी गुड मॉर्निंग पापिया जी, मैं शुभजीत बोल रहा हूँ। बिल्कुल,
0: अरे शुभजीत कैसे हो, सब ठीक ठाक?
1: जी जी, क्योंकि आज पापिया मैडम है तो मुझे लगा कि एक बार कॉल करके देख लेता हूँ कि किस बार ऑफिस चला जाऊंगा, उसके बाद शायद बात ना हो पाए,
0: इसीलिए फटाफट पिकअप कर लिया, बिकॉज सभी बिजी हैं आज, एक लंबे वीकेंड के बाद सभी ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तो फिर बेटर है कि पहले बात कर ली जाए। बताइए कैसा चल रहा है काम, अभी अभी आज ही से शुरू किया आपने?
1: हाँ जी,
0: आज ही से ऑफिस जाना शुरू किया या फिर?
1: नहीं, एक्चुअली यस्टरडे आई स्टार्टेड ऑफ।
0: ओके वेरी
1: गुड, मतलब ऑफलाइन जो होता है, क्योंकि मेरा ऑनलाइन भी होता है, और जो तीन दिन ऑनलाइन होता है वो तो मैं रह जाता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का दिन मुझे ऑफलाइन है।
0: ओके ओके,
1: मुझे जाना है।
0: चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
1: आज क्योंकि हेयर केयर है तो एक्चुअली ये तो जेनेटिकल तो एक पार्ट है, लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ, प्योर जो कोकोनट ऑयल, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वो लगाने की कोशिश करता हूँ। और एक मम्मी एक बना देती है कभी कभी, वो करी लीव्स और मेथी दाना के साथ कुछ और मिलाती है
0: जी,
1: जो उसको पैक करके रख देती है एक बॉटल में।
0: ओके,
1: तो वो कभी कभी लगाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आई एम वेरी स्केयर्ड कि ऐसा टाइम आ जाए, क्योंकि उम्र के साथ साथ बाल भी झड़ते हैं बहुत सारी, तो ऐसा लगता है कि एक टाइम पे
0: पोल्यूशन और वेदर कंडीशन ऐसा है कि दिस आल्सो इफेक्ट्स है ना, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है।
1: और मेरा तो कॉलेज के टाइम से ही मतलब ग्रेइंग होना शुरू हो गया था, मतलब ऐसा है कि एक टाइम था ना, लोग बोलते थे कि अरे अरे पहले 60 तो पहुंचने दो, उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी तो 15-20 साल का बच्चे लोग भी उसका भी ग्रेइंग हो जाता है।
0: जी जी जी जी,
1: तो वो तो ठीक है मैम, आज सुनते सुनते ही मैं ऑफिस जाऊंगा।
0: ओके ओके, बिल्कुल अच्छे से जाइएगा, सावधानी से रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं ये बताइए।
1: आजकल पाव जमीन पे नहीं थी।
0: ओके फाइन, चलो ठीक है शुभोजी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, मिलते हैं फिर। ओके
1: बाय।
0: तो ये थे शुभजीत, और जाते जाते भी हेयर केयर टिप भी देखे गए, तो फिर फॉलो कर ही सकते हैं आप सभी। एक बार चलिए एक चुटकी नुस्खे की बात जब हो रही है तो गाने से पहले कर ही लेते हैं। जैसे कि मैंने वादा किया था कि भाई बात करने जा रहे हैं बालों के ऐसी तैसी करने वाले परेशानियों के बारे में। सबसे पहले पकड़ते हैं उस विलन को जो ठंड हो या गर्मी स्कैल्प पर कब्जा कर ही लेता है, यानी हमारा अपना डैंड्रफ। जब शोल्डर पर सफ़ेद सफ़ेद फ्लेक्स गिरते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी हो जाती है। मार्केट में महंगे एंटी डैंड्रफ शैम्पू क्लेम तो बहुत करते हैं, पर बालों को झाड़ू जैसे ड्राई भी बना देते हैं। इसका नेचुरल और पक्का इलाज क्या है? एक तो शुभोजीत ने जो बताया वो जी हाँ, मेथी दाने से उबाल के तेल सर पे जरूर लगा, और आपके फ्रिज में रखा ठंडा दही और आंगन में लगा नीम भी बहुत बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। कुछ नहीं करना है, बस थोड़े से नीम के पत्तों को पीस कर दही में मिलाना है। नीम के एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इन्फेक्शन को छुट्टी कर देंगे, और दही आपके स्कैल्प को ठंडक देने के साथ साथ बालों को एकदम सॉफ्ट भी कर देंगे। इस हफ्ते में एक बार 20 मिनट के लिए लगाइए और किसी माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए। रिजल्ट देखकर आप भी खुद बोलेंगे वाह दादी अम्मा वाह। और हाँ, केमिकल फ्री वॉश चाहते हैं तो दादी नानी का एक और राज सुन लीजिए। क्या है बताऊंगी जरूर, पर शुभजीत का जो रिक्वेस्टेड गाना है वो पहले चलिए सुन लेते हैं।

0: तो दोस्तों बात की थी आपसे कि केमिकल फ्री हेयर वॉश के बारे में बात करेंगे, हम दादी नानी के एक और राज, रीठा और आंवला। रीठा और आंवला को रात भर पानी में भिगो कर रखें, सुबह उबाल कर उसका पानी निकाल लें। इस पानी से बाल धोने से डैंड्रफ भी खत्म होता है और बाल नेचुरल तरीके से काले और घने भी बने रहते हैं। अब बात है उस दूसरी दिक्कत पर जिसे सुनकर हर किसी का दिल धड़कने लगता है, यानी हेयर फॉल। कंघी करो तो कंघी में बाल, पिलो पर बाल, बाथरूम के फ्लोर पर बाल, ऐसा लगता है जैसे बाल सर पर रहना ही नहीं चाहते। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपकी रसोई में रोज कटता है। जी हाँ प्याज का रस। प्याज में सल्फर होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को रीबिल्ड करता है और नए बाल उगाने में मदद करता है। प्याज को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लीजिए और कॉटन से स्कैल्पर लगाइए। आधे घंटे बाद धो दीजिए। थोड़ी स्मेल जरूर आती है दोस्तों, पर बालों के लिए ये किसी महंगे सीरम से कम नहीं है। तो चलिए अब नुस्खे बहुत हो चुके हैं, थोड़ा संगीत का मजा लेंगे हम, पर उससे पहले ले लेंगे हमारा अगला कॉल भी। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: जी, नमस्कार पापिया जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉन स्टॉप गपशप में।
1: बहुत बहुत आपका भी स्वागत है पापिया जी। मैं मोहम्मद नासिर, दरभंगा बिहार से, लेकिन मैं इस बार बिहार से नहीं बल्कि कोलकाता बेलिया घाटा से।
0: अरे बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कोलकाता में।
1: जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया पापिया जी। और मैंने हमेशा बिहार से भी आपको कॉल किया है।
0: बिल्कुल,
1: और मैं आपका काफी पुराना श्रोता हूँ। मैं हमेशा आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और बहुत ही चाव और लगन के साथ मैं सुनता हूँ आपके सारे प्रोग्राम। और मैं बता दूँ, खास करके जिस एपिसोड में आप आती हैं उसे मैं मिस नहीं करना चाहता।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बताइए कैसा चल रहा है काम और घर परिवार में, सब ठीक है?
1: जी, घर परिवार में पापिया जी बोले तो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है। और इन दिनों बिहार में भी कुछ बारिश वगैरह हुआ, मैंने आपको बताया था कि बारिश नहीं हो रहा, लेकिन इन दिनों कुछ बारिश हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत बारिश की जरूरत है।
0: अभी तो 19 तारीख से वापस शुरुआत होगी, बता रहे कई जगहों पर कि बारिश होने वाली है। जी
1: जी, और मेरा जो वर्क है वो काम है मेरा स्टिचिंग से रिलेटेड, सिलाई से रिलेटेड मेरा काम है। तो पापिया जी, मैं आपको और आपके माध्यम से अपने सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मैं बता दूं कि मैं हर साल दुर्गा पूजा के मौके से कोलकाता आता हूं और पूरे कंप्लीट एक महीना मैं यहां होल्ड करता हूं, स्टे करता हूं।
0: जी।
1: और यहां मेरा मास्टरी का कटिंग का काम होता है, और मैं दुर्गा पूजा में फिर अष्टमी को मैं यहां से कोलकाता से अपने घर के लिए बिहार रवाना हो जाऊंगा।
0: ओके, तो भी जो भी हमारे श्रोतागण हैं वो अगर कुछ टेलरिंग का काम करवाना चाहते हैं, बेलिया घाटे के आसपास रहते हैं, तो फिर जरूर कर सकते हैं। जी बताइए
1: जी पापी जी, आज आपने जो टॉपिक लेके आया है हेयर से रिलेटेड टॉपिक है, तो मैं आपसे बता दूं कि अब तक आपने जो भी नुस्खे बताए हैं नो डाउट वो सारे नुस्खे बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छे हैं और कारगर हैं।
0: जी,
1: सभी से कहूंगा कि वो सारे नुस्खे इस्तेमाल करें और जिनको पास जो भी तजुर्बा है वो अपने तजुर्बा को शेयर करें। मैं लेकिन अपनी बात मैं बता दूं तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 1970 है और 54 साल की मेरी उम्र हो चुकी है।
0: जी।
1: लेकिन ऊपर वाले का कर्म है कि आज तक मुझे कभी भी किसी तरह का कोई भी मतलब ये शैम्पू या फिर किसी तरह कोई नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था। आज भी मेरे पूरे हेयर बोले तो मेरा पूरा एक भी व्हाइट नहीं हुआ, पूरा ब्लैक है।
0: अरे वाह, क्या बात है। मतलब गॉड गिफ्टेड है आप।
1: ये गॉड गिफ्टेड है, और ये आप बोल रही हैं ऑन ईयर, लेकिन जो मेरे साथ रिलेटेड मेरे हमारे लोग रहते हैं वो सारे लोग यही बोलते हैं। ये पता नहीं ऊपर वाले का क्या देन है कि आपके एक भी हेयर व्हाइट नहीं हुए, पूरा के पूरा ब्लैक है बिना किसी नुस्खे के।
0: तो आप बोल ही सकते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ।
1: जी जी, बिल्कुल बोल सकता हूँ, और ये मैं नहीं बोलता बल्कि मैं अपना एक क्या कहते हैं कि तजुर्बा शेयर करूँ। तो मेरी बेटी है एक 30-32 साल की, मैं उन्हें लेकर करके जब बैंक में गया था किसी काम से करवाने के लिए, तो उन्होंने पूछा उनसे कि आपके फादर का नाम क्या है, तो उन्होंने फादर का नाम बताया, फिर बोले आपके फादर को यहाँ होना रहने पर। उन्होंने कहा कि आपके मेरे फादर यहीं पे तो खड़े हुए, यही है। तो वो बहुत शॉर्टेड रह गए, वो कोई आपका फादर है। तो ये वाकई ऊपर वाले का गिफ्टेड है जो बहुत अच्छा लगा, और ऊपर वाले का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे ये तोहफा दिया है। मैं दुआ करूंगा कि सारे लोगों को ये तोहफा मिले और सारे लोगों के बिना नुस्खे के उनके हेयर जो है ब्लैक रहे।
0: अरे फिर अगर सबको यही दुआ मिल जाएगी तो फिर हम किसको नुस्खा बताएंगे, ये बताइए।
1: नहीं, बताने की तो जरूरत पड़ेगी। फिल्म में गोविंदा ने कहा था कि अगर मांगने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया में कोई बंदरस्ती नहीं होता, ऐसी बात नहीं। तो मैं तो सबके लिए दुआ करूंगा।
0: जी जी जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: मेरा गाना आज का है पापिया जी फिल्म उपहार से, गाने के बोल है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है। और मैं ये गाना दो आदमी को रिलेटेड करना चाहूंगा पापिया जी, मेरे एक मास्टर साहब है देवेंदा, मैं उन्हें ये गाना शेयर करूंगा, और मेरे एक दोस्त है मोहम्मद गुलाब बिहार के, उन्हें भी ये शेयर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया पापिया जी,
0: थैंक यू सो मच, वापस मिलते हैं, चलिए
1: ओके।
0: तो ये थे मोहम्मद नासिर भाई, फिलहाल कोलकाता से बात की इन्होंने और बताया भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई हमारी, और सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में मैं एक राजा हूँ, तो चलिए सुन लेते हैं ये गाना, उसके बाद फिर एक चुटकी

0: गाने के बाद फिर से आपका स्वागत है एक चुटकी नुस्खे में। वैसे एक बात बताइए, हम में से कितने लोग ऐसे हों जो सोचते हैं कि रोज रोज सर में तेल पोतने से लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाएगा और लंबे हो जाएंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मेरे दोस्त आप एकदम गलत हैं। ये हमारे घरों में चलता आ रहा है सबसे बड़ा मिथ है। रोज रोज तेल लगाने से आपके स्कैल्प का पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और बाहर की धूल गंदगी बालों में ज्यादा चिपकती है, जिससे हेयर फॉल और बढ़ जाते हैं। तेल सिर्फ हफ्ते में दो बार लगाएं और वह भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। और हाँ, तेल लगाने का भी एक तरीका है, नारियल तेल में थोड़ा सा मेथी दाना और कलौंजी पका लीजिए, जैसा कि शुभजीत ने कहा था। और अगर बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं तो एक मुट्ठी कड़ी पत्ता भी। जब पत्ते काले हो जाए तो गैस बंद कर दीजिए, फिर उसे हल्के गुनगुने तेल से फिंगर्स के टिप से स्कैल्प पर मसाज कीजिए। यह खून के बहाव को बढ़ाता है और बालों की जड़ों को मजबूत भी करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई या फ्रिजी है तो तेल की जगह दादी नानी का एक और प्रोटीन ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, कच्चा दूध। शैम्पू करने से आधा घंटा पहले कॉटन से कच्चा दूध पूरे स्कैल्प के बालों पर लगाएं, बाल एकदम सॉफ्ट और मैनेजेबल हो जाएंगे। या फिर ताजा एलोवेरा जेल सीधे स्कैल्प पर लगाएं, ये खुजली भी दूर करेगा और नेचुरल बाउंस भी लाएगा। और चलिए अब उन लोगों के लिए एक स्पेशल बोनस टिप, जिन्हें आज शाम को किसी पार्टी में जाना है या कोई अर्जेंट प्लान है और बाल एकदम डल लग रहे हैं। बिना सलों गए इंस्टेंटली सिल्की शाइन चाहिए तो रसोई में रखी चाय पत्ती उठाइए, तो चम्मच चाय पत्ती को पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए तो नॉर्मल शैम्पू करने के बाद आखिरी रिंस चाय पत्ती के पानी से कीजिए। ये एक नेचुरल कंडीशनर और ग्लेज का काम करता है। और प्याज या तेल की स्मेल हटाने के लिए आखिरी रिंस के पानी में 2 चम्मच गुलाब जल मिलाना मत भूलिएगा, बाल दिन भर महकेंगे। तो दोस्तों, महंगे सलों के चक्कर में अपने पैसे बर्बाद करने बंद कीजिए और अपनी रसोई के इन छोटे छोटे नुस्खों को अपनी डेली लाइफ में शामिल कीजिए। तो आज के एक चुटकी नुस्खे में फिलहाल इतना ही। बने रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ेंगे आज के दिन की ओर। पर उससे पहले ले लेंगे हमारे जो लिसनर है वो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी बात सुन लेते हैं फिलहाल।
1: एक चुटकी नुस्खे,
0: बारी है हमारे कॉलर की, चलिए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नॉनस्टॉप गपशप में।
2: गुड मॉर्निंग जी, मैं जीतू बातें कर रहा हूँ उड़ीसा से।
0: हाँ जीतू, कैसे हो, सब ठीक है
2: जी? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप लोगों की दुआ है
2: जी। बिल्कुल जी, और ठीक रहना भी चाहिए, और बस यही मैं दुआ करता हूँ कि सभी जो है हमारे श्रोता लोग और हमारे आजी दीदी लोग ठीक रहे और यही प्रोग्राम चलता रहे
0: जी। थैंक यू सो मच, बिल्कुल आप लोग ऐसे प्यार रखेंगे हमसे तो फिर कॉल करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम बिल्कुल ठीक रहेंगे और आपके लिए वापस आते भी रहेंगे।
2: जी बिल्कुल जी, देखिए ये सबसे क्या होता है, प्रोग्राम करने से हम लोग थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाता है थोड़ा सा, है ना
0: जी।
2: और जो जैसे कि हम सोचते हैं मन सैड होता है तो गाने सुनते हैं तो एनर्जी आ जाता है, उससे इस तरह के टॉपिक जो होते हैं तो और भी मतलब होता है कि चलिए जुड़ जाता हूँ, है ना, इससे बातें हो रही है तो आज बता देता हूँ। तो आज का जो टॉपिक मैं सुन रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लगा, है ना, बालों के ऊपर। तो देखिए ऐसे तो हम देखे हैं कि आजकल का जो समय में कई लोगों के है ना बाल जो है झड़ने लगते हैं, है ना। पहले के जो होते थे कि उस समय जो है ना कई पुराने पुराने जो हमारे देखे हैं नानी दादी और जी है ना पुराने लोग, तो उन लोगों का देखते थे बाल जो होते थे है ना पूरा घने होते थे और बहुत मजबूत भी होते थे,
0: बिल्कुल,
2: है ना। और आज के समय में देखते हैं कि कितने जो है शैम्पू है ना बहुत सारे
0: अलग अलग तरह की चीजें मिल गई,
2: ऑयल भी होते हैं, हेयर ऑयल भी लगाते हैं, क्योंकि जो उसके बाल जो है कुछ ना कुछ कमी से ही झड़ने ही लगते हैं। तो मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि देखिए बालों को यदि ठीक रखना है तो सबसे पहले अपना सेहत को ठीक रखना होगा, खान पान में जो है ध्यान देना होगा सबसे पहले,
0: एकदम 100 बातों की एक बात।
2: उसके बाद जो है बाकी जो है उसके बाद झड़ रहा है तो अपना कीजिए जो हेयर, उसके बाद देखिएगा तुरंत जो है 1-2 हफ्ता में असर दिखाने लगा और ठीक हो जाएगा
0: एकदम। चलिए बहुत अच्छी बात, तो आप कैसे टेक केयर करते हैं अपने बालों का?
2: जी बिल्कुल जी, देखिए पहले तो हम भी जो है शैम्पू नहीं लगाते थे ना, तो फिर तो साबुन जो होते हैं साबुन ही लगाते थे, लेकिन बीच में मेरे बाल जो है कुछ ऐसे ही मतलब झड़ने लगे थे।
0: अच्छा,
2: तो मैंने सोचा कि हम बाल मतलब झड़ क्यों रहा है, तो हम फिर बीच में क्या हुआ हम शैम्पू लगाने लगे, इस तरह के हम शैम्पू लिए लगाने लगे, उससे भी ठीक नहीं हुआ। हम सोचे नहीं ये सबसे फायदा नहीं है, सबसे पहले ध्यान रखना होगा सेहत का, खान पीन का, है ना, ज्यादा ऑयल फूड नहीं खाना होगा, है ना, और जैसे कि पानी जो होता है तो उसको पीना होगा, जितने शरीर में पानी पीना चाहिए उतना तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा ही पीने से ठीक रहेगा, शरीर में पानी होना चाहिए
0: एकदम एकदम।
2: तभी उसके बाद मेरे जो है दिल जो ठीक होने लगा और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जी तो और बताओ कौन सा गाना सुनना चाहते हो आप?
2: और एक फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं आ रही थी, लेकिन गाने के बोल है अरिजीत सिंह का, सुनैना संग मर मर किए मीनारे।
0: ओके, यंगिस्तान फिल्म का गाना है ये। जी
2: बिल्कुल जी। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि पहले के जो हमारे जो है ना होते थे चाचा मामा है ना ये लोग, तो उस समय क्या होता था कि बालों से इतने झड़ते नहीं थे, तो उस समय एक स्टाइल भी था, जैसे कि कोई मूवी देखते थे सलमान खान का तो उस तरह का स्कूल जो है ना, मतलब कि जो
0: वैसे स्टाइल कर लेते बालों के,
2: हाँ तेरे नाम का जैसे स्टाइल हुआ, तो मतलब उस तरह का अच्छे लगते थे ना। आज के समय में कोई चाय भी तो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वही बोले तो बाल झड़ने का जो समस्या है लेकर।
0: जी जी जी,
2: तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा जी आज के टॉपिक के बारे में।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, फिर मिलते रहिएगा, ऐसे ही कॉल करते रहिएगा, वापस मुलाकात होगी आपसे जी। तो ओके
2: ओके जी, थैंक यू,
0: ओके बाय, थैंक यू। तो ये थे जीतू जी, और सुनना चाहते हैं सुनो ना संगे मरमर यंगिस्तान फिल्म से, तो चलिए सुन लेते हैं ये गाना।

0: अब दोस्तों ना कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपराह्न 12:30 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगा योग भवन P36 CR Avenue कोलकाता 700012 में गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवा और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र के संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्व पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR Avenue कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in, adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वह उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332216052 0332216052 0332216050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखना होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप
0: में आगे बढ़ेंगे। आज के दिन की बातें करेंगे और आज बताएंगे कि 15 सितंबर दूरदर्शन दिवस के मौके पर क्या क्या हुआ था। जी हाँ, चलिए बात करेंगे इस बारे में, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गाना भी।

Батькиним. दोस्तों 15 सितंबर दूरदर्शन दिवस। जी हाँ, दिल्ली की एक छोटी सी छत पर लगा एक साधारण सा एंटीना और यूनेस्को की मदद से शुरू हुआ एक छोटा सा प्रयोग। किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि लकड़ी के बक्से में बंद ये कांच की स्क्रीन आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की धड़कन बन जाएगी। वो दौर ऐसा था जब टेक्नोलॉजी शब्द भी लोगों के लिए नया था। शुरुआत में हफ्ते में सिर्फ दो दिन आधे आधे घंटे के लिए टीवी पर पढ़ाई लिखाई और खेती किसानी की बातें हुआ करती, लेकिन उस आधे घंटे को देखने के लिए भी पूरा मोहल्ला किसी एक

पड़ोसी के घर के ड्राइंग रूम में सिमट जाता। फर्श पर बैठने की जगह मिल जानी भी किसी जंग जीतने जैसा होता था। फिर वक्त का पहिया घूमा, 70 से 80 का दशक आते आते ये ब्लैक एंड व्हाइट डिब्बा रंगीन दुनिया में बदल गया। इसी के साथ शुरू हुआ दूरदर्शन का वो सुनहरा दौर जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दूरदर्शन का वो घूमता हुआ नीला लोगो और पृष्ठभूमि में बजती पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अकबर खान की बनाई वो कालजयी ट्यून, जिसे जैसे ही वो संगीत हवा में तैरता पूरे घर में एक अजीब सा सुकून छा जाता था।

0: उस दौर की सबसे मजेदार बात थी कि छत पर जाकर टीवी का एंटीना सेट करना। नीचे से जोर जोर से आवाजें आती थी, आया क्या, अरे थोड़ा दाएं मोड़ो और थोड़ा और, हाँ हाँ बस रुको रुको जाओ, धुंधला सा चित्र आ रहा है। ये सिर्फ नेटवर्क मिलाने की कसरत नहीं थी बल्कि पूरे मोहल्ले को एक साथ जोड़ने का जरिया था। टीवी पर झिलमिलाहट भी आती तो लोग बड़े चाव से देखते थे। फिलहाल चलिए, दूरदर्शन दिवस के बारे में बातें तो हो रही है पर आगे भी इस बारे में बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पर क्या है कि हमारे एक बड़े प्यारे से कॉलर हमारे लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए उनसे बात कर ली जाए। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग पपिया जी।
0: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉनस्टॉप गपशप में।
1: मैं मोनिरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण छकराई लाहौर से।
0: जी मोनिरुद्दीन दा, कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक है?
1: हाँ बहुत अच्छा है, और मैं चाहता हूँ खुदा की दुआ से आप भी अच्छा हो और आपका परिवार भी अच्छा है।
0: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक है हम। बताइए, दूरदर्शन दिवस के बारे में बातें हो रही हैं तो आपकी कौन सी यादें जुड़ी हैं दूरदर्शन के साथ?
1: सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम लाने के लिए और इतना अच्छा अच्छा गाना सुनाने के लिए।
0: थैंक यू।
1: दूरदर्शन के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ क्योंकि आज दूरदर्शन दिवस है, टीवी हमारे लिए क्या महत्व है, मैं दो लाइनें बांग्ला शब्दों में बोलना चाहता हूँ।
0: जी बहुत ही बिल्कुल, बताइए।
1: कत अजाना रे जानाइले तुमी, कत घरे नीले ठाई, कत अजाना रे जानाइले तुमी, कत घरे नीले ठाई, दूर के करले आपन बंधु, पर के करले भाई। दूरदर्शन हमारे लिए कितना कीमती है, चारों लाइन से आप समझ गया
0: जी,
1: क्योंकि हमारे पृथ्वी का हर समाचार हमारे घर में है दूरदर्शन के जरिए
0: जी।
1: इसीलिए मैं यही लिखा है, आज दूर अपना हो गया और पर अपन हो गया और दूर निकट हो गया
0: जी।
1: दूरदर्शन के जरिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, और दूरदर्शन के खराब भला ये बोलने से बारे में ये बोलना चाहता हूँ, ये दूरदर्शन के हर प्रोग्राम है लेकिन जिसका उम्र में जिसका प्रोग्राम चाहिए वो देखना चाहिए। कार्टून भी है, टीचिंग भी है, सीरियल भी है, गाना भी है, तो जिसका नीड है उसका उसका वो इस्तेमाल करना चाहिए, इसका दूरदर्शन दोष देना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात,
1: क्योंकि दूरदर्शन मेरे लिए आशीर्वाद ही है।
0: जी
1: मेरा हिसाब से
0: जी। थैंक यू सो मच अच्छी बातें करने के लिए। और बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आपको पास है तो पपिया जी, 20 साल बाद फिल्म से मेरे सामने तो दिन रात रहे, मोहम्मद अजीज और सरिका कपूर की सुरीली आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुर है, जल्दी से आनंद बख्शी, उसका मिठुन चक्रवर्ती, डिंपल कपाड़िया और मीनाक्षी ससाद्री का बहुत अच्छा एक्टिंग किया, तो ये गाना प्लीज सुना दीजिए सभी श्रोताओं के लिए, खास करके आपके लिए और सोमनाथ घोष के लिए।
0: ओके ओके,
1: थैंक यू मैम,
0: थैंक यू, ओके बाय, थैंक यू, चलिए मिलते हैं वापस। तो ये थे मोनिरुद्दीन दा और बात की उन्होंने दूरदर्शन दिवस और दूरदर्शन के बारे में। फिलहाल चलिए उनके रिक्वेस्ट किया हुआ गाना फटाफट सुनिए जाए।

0: दोस्तों, जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी कि दूरदर्शन सिर्फ एक ब्रॉडकास्टिंग सेवा या टीवी चैनल नहीं था, वो 80 और 90 के दशक के भारत का आईना था। वो हमारी सादगी, हमारी एकजुटता और हमारे साझा बचपन की खूबसूरत याददाश्त था। आज दूरदर्शन दिवस के इस खास मौके पर हम उस नीले लोगों और उनकी धुनों का नमन करते हैं जिसने हमें एक धागे में पुरोया और गर्व से कहना सिखाया कि ये दूरदर्शन है, सत्यम शिवम सुंदरम। फिलहाल जाने का वक्त हो चला है। आज के दिन जो है, आज का दिन का सेक्शन बस आज यहीं तक।
1: आज के दिन
0: और जबरदस्त जब शुरुआत हुई है तो जबरदस्त खात्मा क्यों ना हो प्रोग्राम का, है ना। तो पिटबुल दिलजीत दोसांझ और निरेश श्रीधर की आवाज में भूलभुलैया 3 से टाइटल ट्रैक सुनते हुए करती हूँ टाटा बाय बाय। मिलूंगी किसी और दिन, किसी और समय, कुछ और बातों और गीतों के साथ। फिलहाल के लिए बने रहिए 107 एफएम रेनबो पर। और फिलहाल आपसे वापस मुलाकात होगी ठीक 11:10 पर। लो आ गई उनकी याद लेकर एफएम गोल्ड पर।

0: बाहर से बांस मंगवाना बंद करके देसी बांस का इंडस्ट्री से जो है इसका इस्तेमाल करना, किसान कारीगर महिलाओं को ट्रेनिंग देना। अब फायदे किसको होंगे ये भी तो एक बात है ना, छोटे और सीमांत किसान, जमीनी मजदूर महिलाएं कारीगर सबको सीधा फायदा होगा। टारगेट है 1,00,000 हेक्टेयर में प्लांटेशन और 4,000 ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूनिट के जो है ये यूनिट कला जो है तैयार होगा। और अभी तक 24 राज्यों में 60,000 प्लस हेक्टेयर प्लांटेशन, 528 प्रोसेसिंग यूनिट और 130 बाजार हब बन चुके हैं। कैसे काम करता है ये जो नेशनल बैम्बू मिशन है, ये काम कैसे करता है? पैसे की बात करें तो सेंटर स्टेट इक्वल्स टू 60:40, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों में 90:10, यूटी के लिए जो है 100% केंद्र देता है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए जो है 100% जो है केंद्र देता है। नॉर्थ ईस्ट प्लस एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। खास बात, 2017 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से बांस को पेड़ की डेफिनेशन से निकाल दिया गया। अब किसान बिना परमिट के अपने खेत का बांस काट कर बेच सकता है। आपके लिए फायदा है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भी नेशनल बैम्बू मिशन लागू है। अगर आप नर्सरी लगाना चाहते हैं तो सरकार 50% तक सब्सिडी देती है। बांस लगाना चाहते हैं 1 हेक्टेयर पर लगभग 1,00,000 रुपए तक की मदद। अगरबत्ती, टोकरी, फर्नीचर यूनिट लगाने पर कॉमन जो है फैसिलिटी सेंटर के लिए जो है पैसा मिलता है। अप्लाई करना है तो अपने जिले के हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ऑफिस या nbm.nic.in पर जाना होगा आपको। तो आज मैंने बहुत सारी बातें आपसे साझा की ग्रीन गोल्ड से संबंधित।
1: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:07 और 39 सेकंड, यानी कि मुझे पता है कि आप बिल्कुल तैयार बैठे हैं सुनने के लिए अपना नून शो, यानी कि तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का। और आपके साथ इस सफर में हाजिर है आपकी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, जो कहती है तीन का तड़का मतलब ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। तो क्यों ना हम शुरुआत करें इस गीत के साथ आज के तीन का तड़का का कार्यक्रम। आतिफ असलम की आवाज में सुने इस गीत को,

138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को दोपहर 12:30 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगा योग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 712 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावों से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरा का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निर्देशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 712 के नाम से भेजी जाए और ये

डाक या ईमेल आईडी adpgcowb@gmail.com या pgwb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल

0332211212 या फिर 0332211205000 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपरोक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधक मामले एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे कार्यक्रम तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का विद योर आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और ऐसा है कि ये जब दोपहर का समय ना, मतलब दोपहर जब करवट बदलता है शाम की ओर, उस वक्त हमें कुछ ज्यादा ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और उसी वक्त म्यूजिकली योर्स पर हम लेकर आते हैं आपका ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्ट प्रोग्राम तीन का तड़का। तो अब अगला गाना सुनना चाहेंगे ही, और मुझे पता है कि आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं, तो क्यों ना एक बहुत ही रोमांटिक गीत सुना जाए। अगला गीत आप सभी के लिए कुणाल गांजेवाला की आवाज में, फिल्म मर्डर से।

ऐसा है दोस्तों कि ये गाना, खूबसूरत सा गीत आपने सुना केके की आवाज में, फ्रॉम द मूवी काइट्स। नसीर फराज ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक रोमांटिक अंदाज में इस गीत को कलमबद्ध किया और राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया। और जाहिर सी बात है कि तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का में बॉलीवुड से जुड़ी खबरें।

हो तो फिर क्या मतलब खाली खाली लगेगा ना। तो चलिए सुनाती हूँ आपको बॉलीवुड की ताजा तरीन कुछ खबरें साझा करूं आपसे। सलमान खान का गणपति दर्शन, इसके बारे में तो बताना बहुत जरूरी है क्योंकि सलमान खान हाल ही में अपने भाई सोहेल खान के घर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जहां उनका स्टाइलिश अंदाज चर्चे में रहा। आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं, अंबानी गणेश उत्सव में सितारों का जमावड़ा लगा था। एंटीलिया में गणेश उत्सव के दौरान रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, रेखा, कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, माधुरी दीक्षित जैसे कई बड़े सितारे पारंपरिक लुक में नजर आए। अब अगली खबर जो है वो करीना कपूर से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। वो ऐसी खबर है जो कि एक फिल्म से रिलेटेड है और दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि मैं बात कर रही हूं फिल्म दायरा। करीना कपूर की नई फिल्म दायरा को लेकर चर्चा तेज है जो जल्दी रिलीज होने वाली है। रामायण फिल्म के अपडेट भी बता दूं, बहु प्रतीक्षित फिल्म रामायण जो है इसकी रिलीज डेट और कास्ट को लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें लारा दत्ता के कैके का किरदार निभाने की चर्चा है। और फिलहाल रुक करते हैं अगले गीत की ओर, और इसी के साथ आपको बता दें 3:30 बजे से आपके लिए रहेगा NCERT का एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, तो सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। रहूंगी मैं आपके साथ 4 बजे तक, लेकिन 3:30 बजे से आप सुनेंगे NCERT की प्रोग्राम। और हाँ, शाम को 7:02 पर आऊंगी आप सभी के लिए लेकर छाया लोक, रहूंगी 8 बजे तक, यानी कि वो 1 घंटा हम और आप मिलकर साथ बिताएंगे, कुछ यादगार गाने सुनेंगे, कार्यक्रम रहेगा नजारा फिल्मों का नहीं, हम साथ साथ नहीं, प्यार भरे नगमे का। तो इसी के साथ सुलक्षणा को आज्ञा दीजिए और चलते चलते आप सभी के लिए पलक मुच्छल की आवाज में फिल्म MS धोनी से ये गीत।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओं, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटी। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओं, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खेजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं और जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ, लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था।

0: हाँ, अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गाँव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे, लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं, वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं, और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें, एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
3: हेलो मैम।
1: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू मैम?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। आर यू रेडी?
2: यस
3: मैम।
1: ऑलराइट, यू ऑल नो दैट pets are special members of our family, isn't it?
2: Yes,
3: pets are so lovely.
1: Right, Soha.
4: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
1: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
4: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
1: Wow, that's good. And what about you, Navya?
5: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
1: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
6: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
1: Oh, that's so exciting, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
2: Yes, ma'am.
1: Can you name some birds?
3: Sparrow.
1: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
4: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
1: Yes, peacock is a colorful bird.
4: Ma'am, parrot.
1: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
7: Any guesses?
1: Okay, I'll give you a clue. It calls...
4: Crow!
1: Absolutely! absolutely right.

0: Now children, tell me, what did you learn from this poem?
1: Ma'am, all colors are beautiful.
0: Oh yes, now let's have a little game. I'll name the bird and you will tell the color of that bird. Okay?
2: Okay, ma'am.
0: Good.
3: Yes, ma'am.
0: Good. The bird is parrot. Tell me the color.
2: Right.
0: Now, Soham will tell.
4: Green.
5: Yes, it is green. Yes.
0: Right. Now, listen to the sound of parrot. The next bird is sparrow. Now, tell me the color. Who will tell?
2: Me.
0: Navya, Vahanya, Soham.
3: Me.
0: Me. Lavish.
6: Ma'am, brown.
0: You're right. Sparrow has mostly three colors. Brown, white and
2: black.
0: Right.
1: Crow is also black, ma'am.
0: Yes, black is a beautiful color. And now listen to how crow sounds.
2: Ah! Ah!
0: Now you all know about the sounds of birds. Great.
2: Yes, ma'am.
0: So children, did you like the poem?
2: Yes, ma'am.
3: We loved it.
0: Okay. And the song and the little game of birds?
2: Yes, ma'am.
0: Then let's clap for each other. Yay!
7: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता। ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है। कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाईं।
8: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हो इसकी कहानी?

0: उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
1: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
0: अच्छा बाबू।
1: और सुन
0: जी,
1: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी। हैं? भगिनी निवेदिता
0: हैं?
1: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
0: क्या कह रहे हैं बाबू, मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
1: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
0: अच्छा?
1: हाँ, बंगला बोल लेती है। बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
0: अच्छा?
1: अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
0: वो तो ठीक है, पर बाबू।
1: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है, जा भाग यहाँ से।
0: अच्छा,
1: पहले मैं उन्हें भीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
2: अरे अरे, ये क्या करते हैं?

0: बोस बाबू उठिए उठिए, मां काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
1: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
2: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
1: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
2: धन्यवाद।
0: अब बताइए बोस बाबू
1: जी,
0: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
1: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
2: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
1: नुकसान तो है सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
2: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू, जब परिवार की बहू बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
1: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
2: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
0: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
2: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
0: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू
1: जी,
0: यही बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
1: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं इस विषय में?
0: वो व्यवस्था हो गई है, माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
1: चलिए तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर दी है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती, कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
2: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई। आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं, शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
0: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
3: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा मणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
4: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
5: गुड मॉर्निंग दीदी।
2: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
6: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी, उसकी माँ कहने लगी, इश ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
2: फिर तुमने क्या कहा?
6: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
2: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
6: हाँ दीदी।
2: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ। तो
7: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
6: दीदी ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
2: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़ी हैं, भीतर आइए ना। जाते चारू माशी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
6: अच्छा दीदी।
2: नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े थोड़ी लौट जाने देंगे।
6: दीदी ये लीजिए आसन।
2: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुनाकर जाइएगा। किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा। क्या कहती है माँ, आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता, जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए। वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ?
8: हाँ सो तो है।
2: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ। अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
8: तबीयत तो ठीक है।
2: अच्छा मीम दीदी अब मैं चलूंगी, कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो। ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
3: निवेदिता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुईं।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्हा सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक। प्यार भरे नगमे,
1: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका पसंदीदा म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छायालोक। और ट्यूसडे इवनिंग आपके लिए रहता है आपका पसंदीदा सेगमेंट प्यार भरे नगमे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे गाने के साथ हम आगाज करें आज के कार्यक्रम को जिसे सुनकर आप भी जो है थिरकने पर मजबूर हो जाएं। तो चलिए पहला गीत आप सभी के लिए फिल्म ओम शांति ओम से।

फिल्म ओम शांति ओम 2007 में रिलीज हुई थी। दीवानगी दीवानगी गाना भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस गाने की कई ऐसी खासियतें हैं, स्पेशलिटीज हैं, जो इसे बॉलीवुड के बाकी सभी गानों से अलग और अनोखा बनाती है। ये जो है ये मेगा कैमियो बॉलीवुड स्टार्स का एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कैमियो है सॉन्ग। इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 31 बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार्स एक साथ ही एक गाने में नजर आए थे। भारतीय सिनेमा में इतने सारे लीडिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को एक फ्रेम या एक गाने में लाना अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड था। और इस गाने को आपने सुना, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि 107 एफएम रेनबो कनेक्ट करता है हमें और आपको दिल से दिल तक, और जुड़े रहते हैं हम दिल से दिल तक, तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। और अब अगला गाना आप सभी के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्यार भरे नगमे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सारे गाने जो है ना वो बड़े प्यार से आप सुनेंगे, क्योंकि उसमें जो कॉन्टेंट है ना वो पूरा का पूरा प्यार से भरा हुआ है।

असली कमाल जो है वो तो 107 FM रेनबो करता है, जहां आपको इतने खूबसूरत तराने सुनने को मिलते हैं। ये गाना आपने सुना फिल्म त्रिशूल से, कोकिल कंठी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। साहिल ने बड़ी खूबसूरती से इसे कलमबद्ध किया है और खयाम ने संगीतबद्ध किया है। और अब रुक करते हैं अगले गीत की ओर।

आवाज में फिल्म जख्म से आनंद बख्शी ने कलमबद किया है और एमएम करीम ने संगीतबद्ध किया है। और अब अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म जब वी मेट से उस्ताद रशीद खान की आवाज में, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार संदेश शांडिल्य ने।

वाकई में ऐसे गीत जब इंसान सुनता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो दिल में भी जो है ना, जो थोड़ी बहुत भी कहीं ना कहीं दबी हुई कोई मैल हो, कोई दूसरे के लिए कोई ऐसी बात हो जो कि नहीं होनी चाहिए, वो भी बह के निकल जाता है। और इस गीत को आपने सुना अलका याग्निक की।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:29 और 4 सेकंड और इस वक्त आपने ट्यून करके रखा है क्या अजी दिल से दिल तक वाला चैनल यानी कि 107 एफएम रेनबो और सुन रहे कार्यक्रम प्यार भरे नगमे विद योर आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत और अगला गाना भी बेहद खूबसूरत है. क्या है ना कि हर एक गाने का एक अलग फ्लेवर होता है, अलग इमोशन होता है और अब क्या ही कहूँ, आप सभी बड़े समझदार हैं श्रोता हमारे और 107 वाले सभी श्रोता जो है ना वो बड़े समझदार होते हैं और जब बात आती है गानों की तो फिर उनके पसंद भी बड़े लाजवाब होते हैं. और अब अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म डंकी से इरशाद कामिल ने इसे बड़ी खूबसूरती से कलमबद्ध किया है और संगीत से संवारा है प्रीतम ने.

चित्रा और हरिहरन की आवाज में इस गीत को आपने सुना। फिल्म रोजा से पीके मिश्रा ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है ए आर रहमान ने।

इस गीत को आपने सुना फिल्म दुश्मन से उदित नारायण लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह। अगला गीत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में। और आपको बता दूं कि गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत का जादू जतिन ललित का।

आकाशवाणी कोलकाता के एफएम रेनबो यानी कि 107 एफएम रेनबो पर आप सुन रहे कार्यक्रम प्यार भरे नगमे। और आपको बता दूं कि 8 बजे आप सुनेंगे 2 मिनट के लिए स्थानीय समाचार बंगला में, और 8:02 से लेकर 9 बजे तक आपके लिए रहेगा छायालोक का सेगमेंट प्यार भरे नगमे का पार्ट 2। लेकिन मैं तो रहूंगी 8 बजे तक, और ऐसा है कि इस बीच जो समय हमारे और आपके बीच शेष बचा है उसमें क्यों ना एक और खूबसूरत गीत सुन लिया जाए। तो ये गीत आपको मैं सुनवाने वाली हूँ, किस फिल्म से, चलिए बता देती हूँ कि किस फिल्म से आपको ये गाना मैं सुनवाने वाली हूँ। वैसे आपको बता दूँ कि ये गीत बहुत ही खूबसूरत है और मतलब दिल को छूलोने वाला गीत है। कुमार शानू साधना सरगम की आवाज में इस गीत को सुनेंगे। इसे हमने लिया है फिल्म जुर्म से। इंदिवर और पयाम सईदी ने इसे कलमबद्ध किया है और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को। फिर किसी रोज किसी कार्यक्रम में जरूर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक यही कहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

वेल फ्रेंड्स, कहो ना प्यार है फिल्म से इस गीत के साथ, यानी ना तुम जानो ना हम गीत के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकली यॉर्स में। आप सुन रही हैं कार्यक्रम छायालोक, लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। फिलहाल आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन तराने, एक रोमांटिक गीत के बाद अगला एक रोमांटिक गीत अरिजीत सिंह के साथ अंतरा मित्रा की आवाज़ में।

बॉम्बे जयश्री की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म का नाम रहना है तेरे दिल में। रोमांटिक तरानों की बहार है आज के इस कार्यक्रम में। फिलहाल आप सभी के लिए पेश है हमारे कार्यक्रम का ये अगला तराना।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म लूडो से ये गीत आबाद बर्बाद। रोमांटिक तरानों का सफर जारी है। कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल यार्स पर। फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का अगला तराना। आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल यार्स पर, कार्यक्रम जिसका नाम है छायालोक। मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त और होस्ट देविका, और आप सभी के लिए पेश है ये अगला तराना।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

वेल फ्रेंड्स, फिलहाल आप सुन रहे थे इस गीत को, चाहतों का सिलसिला। ये गीत था फिल्म शब्द से, कुमार सानू के साथ सुनिधि चौहान की आवाज में। ये गीत आप सुन रहे थे 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकली। और स्वर फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का ये गीत, अदिति पॉल के साथ साहिल हाडा की आवाज़।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में जो समय हो रहा है वो ये बता रहा है कि आपसे लेना है विदा। चलते चलते आप सभी के लिए श्रेया घोषाल, गणेश चंदन शिवे की आवाज में फिल्म बाजीराव मस्तानी से दीवानी मस्तानी सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाजत। नमस्कार, शब्बा खैर।